0: शंख मूर्ख अंत घोर शंख चोर हराम कोर
1: शंख अमर कर जाए जोर शंख गड़बड़ हत्या कमाए
0: शंख पापी पाप कर जाए शंख कूड़े यार कूड़े फिराए
1: शंख मलेच मल पखा है शंख निंदक सिर करे पार
0: नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक बार
1: जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
0: अगम अगम असंख लो
1: असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला
0: अखरी ज्ञान गीत गुण गा
1: अखरी लिख
0: बोलन बाण
1: अखर सिर संजो

0: द्वार ना जोगी जाने रुत भाव ना कोई
1: जाकर तासिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई
0: के कर आखा के सलाही क्यों वरनी के जाना
1: नानक आखण साहब को आखे एक दो एक सियाना
0: बड़ा साहिब बड़ी नाई कीता जा कहो वे
1: नानक।

0: गावण पंडित पन रखी स जुग जुग वेदा नाले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले
1: गावे जोर महाबल सूरा गावे खाड़ी चारे
0: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
1: तुनो गावे जो तुद भावन धरते तेरे पग प्रसाले
0: और किते तुनो गावन से मैं चेतना आवर नानक
1: सोई सोई सदा सत्साहिब साचा साची नाई
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
1: रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन पाई
0: कर कर वेखै कीता अपना जे तिस दी वड़ियाई
1: जो तिस भावै सो कर सी हुक्म ना करना जाई
0: सो पाशाओ जहां पद साहिब नानक रहन रजाई आदेश आदेश आदनील अनाहत जग जग एक वेश।

0: है, तंद है, बंद है,
1: बुझ है, सुझ है, काल है, जाल है,
0: अला है, जा है, अनंत है, महंत है,
1: अलीख है, नसीख है, लंब है, संभ है,
0: अगम है, जम है, भूत है, अशुत है।

0: समस्ती स्वरूप है।
1: प्रभु की परमाथे स्वस्ति विभूते
0: कलंक विनाने कलंक स्वरूप है।
1: नवरा राजेश्व परम रूप है।
0: जोग जोगे स्वरम परम सिद्ध है।
1: नवरा राजेश्व परम वृद्ध है।
0: अस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नव पारुण ज्ञाता।

0: शाशां लोकुपे नो रोग रोगे नो संसदाने नो इष्ट इष्टे नो तंत्र तंत्रम
1: सदा सिद्धानं सर्वं पन्नासी
0: रूपे रूपे स्वस्तुं देवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वित्कर्ता
0: अदो और अदं अभिमोघर्ता
1: परम परमेश्वरं प्रोजपालं
0: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालुं
1: छेदिय पेदिय नामं कामं
0: स्वस्तो प्राजी स्वस्तस्ताम
1: तेरा जो चाचरी छांद जले है थले है पी
0: अपे है जो है अदेश है अपेश है
1: प्रयात छंद अगादे अबादे नंदी सिरूपे
0: नमो सर्माने स्वस्ती निदाने
1: नमस्तंग नाथे नमस्तंग परमाथे
0: नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे
1: नमस्तंग काले नमस्तंग पाले
0: नो सर देशे नो सर पेशे
1: नमो राज राज नमो साज साजे
0: नमो शाह शाह नमो मा मा
1: नमो गीत गीते नमो पीत पीते
0: नो रोग रोगे नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
0: नमो सर्व जीतम नमो सर्व पीतम
1: नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान
0: नमो सर्व मंत्रम नमो सर्व जंत्रम
1: नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं
0: नमो सर्व रंगे त्रंगीय नंगे
1: जी जी नमो बीज बीजे
0: एके जे अपे जे स्वसक प्रसिजे
1: पालक स्वरूपे का कर्म परनासी
0: सदा सर्वदा स्थितम निवासी
1: जय प्रशांत वै प्रसाद अमृत कर्म में अमृत तर में
0: अकाल जोगे अचल भोगे
1: अचल राज्य अटल साजे
0: अकाल तर्व लाख कर्म
1: सर्वं दाता सर्वं ज्ञात
0: सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राण सर्वं त्राण
0: सर्वं भोगता सर्वं जुगता
1: सर्वं देवं सर्वं पेवं
0: सर्वं

0: हरिं करिं विरनामेह कामेह चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
1: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र पड़ती
0: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
1: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
0: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने
1: चाची शान्ना चित्रण मित्रण परमुना पित्र
0: नगर मुन्ना काये जन्म जाए
1: चित्रण मित्र परे अपवित्र
0: ब्रह्म स्वरूप है के अनुप है
1: क्या देव है के आप देव है
0: चित्र महीना है के कह दिन है
1: रोजी रजा के रही मैं रहा
0: के पाक बैब है के गैब गैब है
1: के फूल गिना है के शाहनशाह है
0: के कारण कनिंद है के रोजी दहिंद है
1: के राज क्रीम है के कर्म क्रीम है
0: के सर्व कली है के सर्व दली है
1: के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या
0: के सर्वत्र गान है के सर्वत्र पान है
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
1: के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना
0: के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र
1: अजीज
0: उल नवाज है।

0: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
1: वीर पार बिडे बरियार विचारे साकी तार पछैया
0: तोर देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया
1: गाड़ी घड़ान को तोरण हार सो बातन ही चक चार लवैया
0: साहे श्री साल को सिर नायक जाचिक नेक सो एक देवैया
1: दानव देन फिर निन्ने साच पूत पुएक पुआन पैगे
0: जीत दे जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप्त पैंगे
1: उन प्रतापन बाद जै तुन पापन के बो पुन छपैगे
0: सास बो फिर सतरंग फिर जग सतर सब अवलोक छपैंगे
1: मानव इंद्र गजिन राज जोन त्रोक राज करेगे
0: कोरिश नाग जातिक दान अनेक स्वंबर साज करेंगे
1: राम महेश्वर विष्णु सती पद अन फिसे जम फाट परेगे
0: जेना श्री पद के पस है पग ते नर फिर न देह करेंगे
1: कहा पे लो दो लोचन मूल के बैठे हो भक्तियान लगायो
0: नाथ प्रियो लिए सात समुद्र लोग पर लोग वायो
1: लाश की ओ बख्यान सुबह के ऐसे

0: गुण होए चित की इच्छा अपना जान करो पत पारा आबाद मोहि बचाओ
1: सुखी बिसा मोरो परवार
0: सेवक सखी सदा करता रा
1: मोर छानिज करता करिया
0: सब धरण को आप सुंदर है
1: पूर्ण होए हमारी आशा
0: तोर भजन की रह प्यासा
1: तो मैं छाट को ये बनत्या
0: जो बर चाहो सो तुम ते पाओ
1: सेवक सखी हमारे तारिया
0: जो जो शत्र हमारे मारिया
1: आप हाथ ते मुझे करिया
0: मरण काल का त्रास में भरिया
1: जो सदा हमारे पछा
0: श्री अस्तु जो करे और रक्षा
1: संसहाय प्यारे बंदुष्टन के हमता
0: वो परी चतुर्दास

जाकोपेदना पातवेदा मामूढ़ जानत निरंकार का चीत नरणत भिन्न भिन्न तो तेती के सजा प्रथम संसारा रंग भैरो राव कई भूपा खान बहर रच दिली कहो सिमट वह संकरे कैठा आद जगा स्वरूप से अंपव सिख बार सिख संगरो सकल मलेश करो रण काता दिन के दुष दुख दवे मरे दिन के तुम संकट सब टारे ताके का निकट

घर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया, चीज करन मन भाव दे हर बुजन नाही हारिया, कर फरमाए सखाया, विख मैलत मरन विसारे।

आप कराए साखती फिर आप कराए मार, एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़ा बिसियार, आप कराए करे आप।

गौती जी के पास आए दसवें पद भगती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हो सहाय आयजन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुखदाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दयावताय सुथाय हो जी सहाय दसवें पाचा तन सर तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाय हो जी सहाय दसवें पातशाह तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाए हुए सहाय दसवें पातशाह जी जो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पात दादा त्यां तक के खालसा जी सब बोलो जी पंजा प्यारे अचो सब जातियां चाले मुटियां हटियां दपिया तपिया जे नाम जपिया वंच किया देख चलाए देख वाए देख तिते अंदर कीता देना प्यारे सचियारे दी कमाई दे त्यां तक के खालसा जी सब बोलो जी जिन्हें सिंह ने सर महत सीते ते वन वन कटाए खोपरिया यहाँ चरखियाँ ते चढ़े ते आर्या ना चरा के कुदरत सेवा ने कुर्बानी किया धर्म नहीं हारिया सिक्की कैसा सुवासना ने बाही तिना दी कमाई का त्याग चढ़ के खालसा जी सब बोलो जी

हुनका सबका सार सुख हुए। जहाँ जहाँ खास जैसा तहाँ तहाँ चाय देखते एक फतेह पीर की पैर पंथ की जी श्री साहेब जी सहाय खास जी के बोल मालूम बोलो जी। सिख दा सिखी दान कैस दान रह दान विवेक दान बसाओ दान परोसा दान दान सिद्धान नाम दान सिर अमृत सा साहिब दीदे दासन स्नान चौंके अटंडे बुंगे जुगर जुगर तार तान का जयकार खालसा जी सा बोलो जे। सिख दा मन नीवा मातु जे मत पता राखा है अवकाल प्रति अपने पान सदा सहाय दा तार जी उसी ननकाना साहिब ते होर गुरदा गुरदामा दे तना तो पात्र नू छोड़ा गया है। खुले दर्शन दी दात सेवा संभाल दा दान परा खास जी नू बख्शो जी। हे नमाने दमान सतगुरु ने ताने दे तान सतगुरु ने ओटन दी ओर छते पिता वागुरु जी आप जी हर जोर अस दीवार दी दास है जी। अख दवा दा काटा पोच माफ करनी अगे तो सोच जी बख्शनी करा प्रसाद दी देख हाजिर है पोग लाओ जी। हुक्म नाम बख्शे संग

ठांडे दरबार। तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार। रहो तुम तन धनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सो जस तुमार। मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो सितार। जय देव नामा बेपस धामा को कृपा पई है अपार। कह कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत नाम बार। सो को टल गुर से भी है अहनस सहज सुभाए। पर से है गुरु का जन्म मरण दुख जाए। ओ वै सिफत सामदी नूर अरसो पुरसों की है। तुद डिठे सचे पाप सज्जन सज्जन पात शाह। इस पास बैठिया सोइया।

जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोग संतापे।

आओ जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का इन्हें आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद तुम कत लो हम तुम हम कत लो तुम कत दूद क्या कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहिए तो है हमार है गौड़ी कबीर जी अंधकार सु कभे न सोई है राजा रंक दो मिल रोई है जो पैरस न राम न कह बो पुजत बिनसत रोवत रहो रहाओ जस देखिया तरवर की छाया प्राण गए कहो का की माया जस जंती मैं जियो समाना मुए मन को का कर जाना हंसा सरवर काल शरीर राम रसायन पियो रे कबीर गौड़ी कबीर ज्योत की जात जात की ज्योति दितलागे कंचुआ फल मोती कमन सुघर जो निरपो कही है पाओ भज जाए पैवे रही है रहाओ तर तीर्थ नहीं मन पते आए चार चार है उर जाए पाप हूं तो एक समान कर पारस रह गुणगान कह कबीर निर्गुण नाम ना रजोस इस पर चाहे प्रचार है इस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातनी बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ काई जान जान सब कह ताई राव कहन काम ने बधियाई है तो मन मान ने जाते हो में जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चर निवास कह कबीर कही है काए साह संग बैकुंठे आए गौड़ी कबीर जी उपजा निपजा निपज समाई नैनो देवते जग जाई लाज नम्र कहो कर मेरा अंत की बार नहीं किस तेरा रहा वन जतन कर काया पाली मृति बार अगण संग जाली जीवा चंदन मर्दन अंगा सो तन जलै काठ कह संगा कह कबीर सुनो रे गुणिया बिनसे को रूप देखे सब दुनिया गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जय तो की जय जो अपन जीजा मैं ना मरो मर बो संसारा मोए मिलो है जीवालन हारा राहो या दे ही परमल मैं कंदा ता सुख बिसरे परमानंदा कुआटा एक पंच पनहारी तूटी लाज परे मत पहारी कह कबीरे बुद्ध बिचारी ना हो कुआटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बोरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भोए आए रहा हो जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबू राजा छत्रपद कबू पेखारी

वेद की पुत्री सिमरत भाई साकल जेवरी लह आई आपन आगर आते बाध्या मुख बांध काल सर सांदे आ रहा हो कटी न कटे तूट न जाई सास आपन हो जाको खाई हम देख ज्यो जाब जाग लूटे आ कह कबीर मैं राम कह झूठे आ गौड़ी कबीर जी दे मुहार लगाम पैरामो सकल तजीन गंगो रामो अपने विचार सवारी की जय सहज के पावड़े पग धार ली जय राव चल रहे बकुंठ तो जेल तारो चत प्रेम के चाबक मारो कह कबीर भोग कह कबीर कहत कबीर भले सवारा बिर देवते रहे निरारा गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचों अमृत गाए ते मुख देख लुकट लाए तिक दुख राम राय काटो मेरा अगण दया गर्भ बसेरा रहाओ कै भगूती बहुत भाती को जा रे को गढ़ ले माटी कह कबीर अर्चन दिखाओ पाछे ते चमक्यों ना बठाओ गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पौना जा रे कसम तरा के गमना राम जप तो तन जर की न जाए राम नाम जितरे समाए राओ जाकुर जर कहो आन नटवट खिले सारंग पान कहो कबीर अखर तो भाग होएगा कसम तलेगा राख गौड़ी कबीर जी दो पदे ना मैं जोग ध्यान जितलाया बिन बैराग न छूट समाया कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम धारा राव कह कबीर खोजो असमान राम समान देखो आन गौड़ी कबीर जी

चराव गाओ रे जाको ठाकुर तुई सारंग धर्मो की बीरा नाओ रे गौड़ी उर्बी बारा बिपल बस्तर के तया पैरे क्या बन मदे बासा क्या पै नरदेवा तू कह क्या जले बरो बोरे हो गया ताजिए रे जाएगा मैं जाना अब गत समझे आना जद गत देखो बौर ना पे क्यों संग माया लपठाना राहू ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी जग सगलो धंधा कह वीरे राम नाम बिनया जग माया अंधा गौड़ी बारह मन रे छो परम प्रगट हुए नाचो माया के डांडे सूर किसन मुग्रंथ डरपे सदी के साचे भांडे डगमग शाह रे मन बौर आप तो जरै मरै सिद्ध पाई अली नू हस नौरा राहो काम गोद माया के लिए जगत विभूता क्या कबीर राजा राम नहीं छोटो सगलू ते उच्चा गौड़ी प्रमाण तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार तू ही दरिया तू ही करिया तुझी ते निस्तार बंदे बंदगी एक त्यार साहिब रोस धर्म के प्यारा और नाम तेरा दार मेरा जो फूल जई है नार कह कबीर गुलाम कर काजी है भावे मार गौड़ी लाख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बहुत ठाकुर भगत हित अवतार लियो है भाग बड़ो बप

ठाकुर जाके माए ना बापू रे गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदो जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा मैं थारी रहाओ निंदा होए ता बैकुंठ जाइए ना बदात मने बसाइया हृदय सुध जो निंदा होए अमरे कपरे निंदक तो होए निंदा करे सो हमरा मीर निंदक माए हमारा चीज निंदा निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदक निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उधार जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबे मुतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपो तारण तारण राम राया राहो जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भय हैं एक है एक मन पते आई जाब बुद्ध उति दब बल कैसा बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध अर लई मेरे बुद्ध बदली सिद पाई गौड़ी का ट्रेन कर कोटड़ी बांधी बस्तानू बीच पाई कुंजी कोल प्राण करा के करते बाना लाई अब मन जात रहो रे भाई गपलो एक जन्म गवायो चूर मूसे कर जाई रहाओ पंच पैरू आदर मैं रहते तिनका नहीं पधियारा चित सुजेत दिन चित होए रहो तो लै प्रगास उजियारा नव कर देख जो कामन भूली बस रूप न पाई गए कबीर नावे कर मूसे दसवें तत् माई गौड़ी माई मोह अवर न जाने वान ना शिव सिन का जास गुण गावदास बस है मोह मेरो प्राण ना रहाओ हिरदय प्रकाश ज्ञान गुरु का मत गगन मंडल मैं ध्यान ना बिर कहो ते भय बंधन भागे मन जिकार सुख जानना एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मन आनना चंदन बास भय मन बासन त्याग घट अभिमानना जो जन गाए त्याय जस ठाकुर दास प्रभु है धारणा ते बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथारणा काट सख्त शिव सहज प्रगास एक समानना

सोई लख मिटना वो ही कका किरण कम मैं पावा सस विकास नहीं आवा रे जे जे तहा कुसुम रस पावा तके कहा कह का समझावा कखा ए कूड़े मने आवा कूड़े चढ़ना दह दिस्थावा कि समझान कि मैं कर रह तो ए हुए नि आखो अके पतल है गगा गुर कह बचन पछाना दूजी बात ना धरी का ना रह बेअंगम कतना जाई अगे कह कह गगन राई गगा घट घट निम सह सोई घट बूटे घट कवे ना होई ना ता घट मैं घाट जो पावा सो घट छाड़ अव घट कद तावा गंगा निरगह स्नेह कर निरवैर संदेह नाही देख न भजिया परम सियन भी चचा चर चचा रचित चरित्र है भारी ताज चरित्र चित है चितकारी चित्र बचित्र अवचेरा तज चित्र चित्रा चितेरा छाए चित्रपद पासा चख के ना रहो छठ कह ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताए छाठ कथा बधावा जजा जो तन जीवत जरावै जो बनजार जो सो पावै आस जार पार जार जार जब रह तब जाए जो तो उजारू लह

ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल जहां समान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम मैं बसे मुरार, सत संतो का तरु त्यान, कथनी कथिय ब्रह्म।

गुरगम भेद सुहर का पाबू रहाऊ अदित करे पग आरंभ काया मंदिर मनसा थंब एनस अखंड सुरही जाए तो अनहद बैन सहज में बाय सोमवार सस अमृत चरै चाक बेग सकल पिक हरै बाणी रोकिया रहे द्वार तो मन मतवारू पीवन हार मंगलवारे ले महीत पंच जोर की जाने रीत कर छोटे बाहर चिन जाए नात्र खरात से है राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमल देव एक समतर है उर्द पंकल सूदा करै बृहस्पत विखिया दे बहाये तीन देव एक संगलाए तीन नदी तैन त्रिकुटी माहे नस कसमल तू वह नाहे सुकृत सहारे सो ए प्रत चढ़ अनदन आप से लड़ै सुरखी पंचू राखे सबै त्यों दूजी दृष्ट न पेसी कबै थावर थिर कर राखे सोए जोतन वटे घट मैं जोए बाहर पीतर प्या प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब काट जब लग घट मैं दूजी आन तौलो मेल न लाभे जान रमत राम सुलागु रंग कह कबीर तब निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम

मेरी हर हो विपत जन करो सो भाई, चरणा छाडो शरीर कल जाए, कहो रविदास परो तेरी साबा, वेग मिलो जन।

काल हौवन कथा न तरस जवाल अब मोहे कूप वतन गए पाई ओहा खैर सदा मेरे भाई रहाओ कायम दायम सदा पातशाह।

हाऊ बोबिद धर्म नरूपिया करता दिसे सब लोए कर्म कर्म ते छुट्टी है जे सद सबसद होए कर्म अकर्म विचारी है संका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हृदय अभिमान बाहर उदक पखारी है कट पीतर पवित्र बकार सुत कवन पर होई भो सुच कुंचन विद व्यवहार रप्रगा सुरणी सदा जथा कत जानत संसार गत जानत सब संसार पारस मानो तब हुए तब छुए कनक होतनी बार परस परस गुर पिटिया पूर्व लिखत लाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर को पाट भगत जुगत मत सतकारे प्रबंधन काल विकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार अनक जतन ने गुरु की है टारी न टरे प्रम फास प्रेम भगत ने उपजै ताते रविदास उदास।

साह मेरा एकू है भाई एकू है रहाओ आपे मारे आपे छोड़े आपे लेवे दे आपे वेखे आपे विकसै आपे नदर करे जो किश करना सो तर कर रहे आवरना करना जाए जैसा वरतै तेसो तैसो कही है सब तेरी वड़ियाई कल कल वाली माया मत मीठा मन मत वाला पीवत रहै आपे रूप करे बपा ती नानक पपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज भाउ हुए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तपताओ इतरंग नाचो रख रख पाओ उरे ताल जाने सालाह होर नचना खुशिया मन माह रहाओ सतसंतोख वजे दुइ ताल पैरी वाजा सदा निहाल राग नाद नहीं तू जा पाऊ इतरंग नाचो रख रख पाऊ भौ फेरी हुए मन चीता बहिंदिया उठदिया नीता नीता लेटन लेट जाने तन स्वाह इतरंग नाचो रख रख पाऊ सिख सभा दिखिया का पाऊ गुरमुख सुनना साचा नाऊ नानक आखण वेरा वेर तिरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौनो पाए तरी सब धरती जलगनी का बंद किया अंतले दसर मूड कटाया रावण मार क्या वड़ पया क्या मां तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ जी उपाए जुगत हथ किन्नी काली नत क्या वड़ पया क्या वड्डा पया किस तू पुरख जो रू काहुन कही है सर्व निरंतर रव रहे नाल कटांब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंत न पायो ताका कंस सेद क्या वड्डा पया रतनु पाए तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कहे नानक छपे को छपया एक ही वंड दिया आसा महला पहला करम करतूत बैल किस्तारी नाम ना फल हुआ तिस रूप नारेक नाहद वाजै शब्द निरंजन किया करे वख्यान जाने जय कोई अमृत पी वैसो ही रहाओ जिन पिया सत पै है टूटे बंधन फा है ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोडे माया के ला है सर्व जोत रूप तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया रारे रूप निराल बैठा नद करे बिच पाशाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द नाद सो सराता नानक विचारा या समहला पहला मैं गुण गला के सिर भार गली गला सृजनहार खाना पीना हसना बाद जब लग हृदय न आवे याद तौ प्रवा कही क्या की जाय जन्म जन्म कुशली जी ले जाय रहाओ मन की मत मता गल मता जो कुछ बोलिए सब खतु खता क्या मुँह लै की चय अरदास पाप पुन दुए साखी पास जैसा तू करै तैसा

सब के जो उपजे सुहावे जाए नानक स्तरणा व्रजाए अस महला पहला इको सर्वर कमल अनूपा सदा विकासे परमल रूपा उज्जल मोती चुगै हंस सर्व कला जगदीशे हंसा जो दिसै सो उपजे बिनसै बिन जल सर्वर कलमना कमल न दिसै रहाउ बिरला बूझे पावे भेद साखा तीन कह नित भेदा नाद बिंद की सुरत समाए सतगुरु से परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवातो राज राज सदा बिकसातो जिस्तु राखे कृपा तार बूटत पाहन तारे तार त्रिपवन मैं जो त्रिपवन मैं जानिया उल्ट पई कर कर मैं आणिया पाहन सपगत करे लिवलाए नानक तिनके लागे पाए आसा महला पहला गुरमत साची उजत दूर है बहु स्यान बलागे तूर है लागे मेल मटै सच नाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच करते प्रपास रहाउ कूड़ कमावे आवे जवै कूड़ कमावे आवे जावै कहन कथन वारा नहीं आवै क्या देखा सूझ बूझ न पावै बिना में मन तृप्त न आवै जो जन्मै सह रोग व्यापै हमे माया दुख संतापे से जन बाचै जो प्रभ राखै सतगुरु से अमृत रस चखै चल तो मर राखे अमृत चख है सतगुरु से अमृत शब्द भाख है साचे शब्द मुक्त गत पाए नानक विच आप गवाए आसा महला पहला जो तिन किया सो सच्ची अमृतना सतगुर दिया हिरदय नाम नाही मन भंग अंदर नाल प्यारे संग हर जीव राखो अपनी सरणाई गुर प्रसादी हरस पाया ना पदार्थ नौ नित पाई रहाउ कर्म धर्म सच साचा नाउ तांके सत बलहारे जाउ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वरजन पाया तन नारी हर स्यो राते शब्द विचार आप तरै संगत कुल तारै सतगुरु से तत विचारै अमरी जात पत सच नाउ कर्म धर्म संजम सत पाओ नारंग बख्शे पूछना होए दूजा मिटे को सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावे आए एक हर राते रहे समाए एक धर्म गगन में ठौर न पावे से कर्म ही हर नाम ते आवै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुरपुरै ते गातमित पाई ई संसार बिकवत अत भौजल गुर शब्दी हर पार लंगाई रहाउ जिनको आप ले प्रमेला तिनका काल न साके पीला गुरमुख निर्मल रहे हे प्यारे ज्यों जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनु कहीऐ दिसै गुरमुख सच लई है दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लई है कत कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावु पार सास्त बिसमृत भव भेद अड़सठ मजन हर सरीद।

हर हर नाम भगत प्रेपितम सुख सागर उतारे भगत बच्छल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तार मन स्यों जूझ मरै प्रभ आए मन स्यों जूझ मरै प्रभ पाए मन सा मने समाए नान कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवला।

जातू देह जपी त्रणाऊ दरगा बैसन हुवे थाऊ जात पावेता दुर्मत जाय ज्ञान रतन वस मन वसे आय नद क्रेता सतगुरु मलै प्रणुत नानक भवजल तर आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन धेन पंक बिन पंखी जल बिन उत्पज कामनाही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोटी तेरा नाम नाही की विसरै दुख बहुता लागै दुख लागे तू विसरनाही रहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन न वाजै चरनी चले पजूता आगै बिन सेवा फल लागै अखर बिरख अरख अखर बिरख बाग पोए चोखे

जय कर करते कीर्त हो ऐसो का राख बढ़ाई तो रहा विश्व चस्या कड़िया प्रसति वारी माह हुआ सूर्य कुरुत अनेक नानक करते कीर्ति वेसा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला आसा कर तीजा महला पहला। लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान। जा पत लेखे ना पवै तब सब नरफल जा ता सब नराफल काम। हर के ना बिना जग धंधा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा। रहाउ लख टिया लख संजिया खाजे लख आवै लख जाहे। जा पत लेखे ना पवै ता जी किथै फिर पाहे। लख सास्त समझावनी लख पंडित पड़े पुराण। जापत लेखे ना पवै तब सपे ता सबे को परवान। सच ना पत उपजै कर्म नाम करतार एनस हिरदय जे वसै नानक नदरी पार। महसा महला पहला। दीवा मेरा एक नाम।

फक्कड़ पाए लखपणे मड़या कर एकटे एक रत्ती ले पाहि रहाउ पिंड पतन मी केसु क्रिया सच नाम करतार इत्थे उत्ते आगे पाछे ए मेरा आधार।

ते रहाउ। दरकर महिला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत दिस गए। पीर पकंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पाए। साध सहज सुख रस कस्त जियल कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिया दर्द बंद दर तेरे नावरते दरवेश पाए। खलरी कपरे लकड़ी चमरी सुखा सूत धोती कीने। तू साहिब हो सांगी तेरा परमे नानक जात कैसे। आसा कर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे तीरनार है। जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल से तीतरनार है। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अतक लगै रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हार। मिलेगा प्रीतम कब तब करोगी सिगारू। पंच की हम एक पतारू। पेट लगी है जियड़ा चालन हार। पंच की मिल रुदन करे हा। साह पूजता प्रणत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा कर छेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवे पवन होवे सुतारी। खिवा सिंगार कामन तन पहरे।

संत जना हर मेल हर पाया बड़भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़भागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो हिरदे हर हर हर तुन उपजी हर जपिए

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया धन हृदय नाम बेगासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रा

रमैया के गुण चेत प्राणी गुण मूलते गुण दृष्टानी जिन तू सात स्वर श्रृंगारे जिन्हें बकर बुगुण में जिन्हें बारे बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध बार जो बन को जिन सुख सोध बिरद ब्याह पर साक्षण मुख ब्याह बैठ को दयान यह निर्गुण गुण कुछ न बुझे बख्श ले तो नानक से जय जय प्रसाद तेरे पर सुख बसा सुत प्राद मीत बनता संघर्ष जय प्रसाद भीम शीतल जला सुखदाय पवन पाव कुमल जय प्रसाद भगत सबल सा सकल समग्री संसार बसा दीने हस्ताव करने तरसना।

दस बसूले पाचे पावे बस कारण भी कोट गुआवे कुमने दे दस फेर ले तो मुड़ा को कां करे जिस ठाकुर सो नाई चारा ताको की जिस नमस्कार जाके मन लागे ब्रह्म मीठा सर्व सुखता मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाए गणत शाप निदरास का आत्मित बर तिन दोलास अपनी मान कश बरसा ले अज्ञानी मन उस करे अपनी प्रति दया भी खोवै पर उसका विश्वास न होवै जिसकी मैं सजा के राख के प्रभु की आगे माने माते उसे चौकन करे निहाल नानक साहब सदा दयाल आत्मा के सर प्रो जान ने बिरखिशा सो रंग लावे उबिन से मन पसावे ज्योति से सुचाल नार उठाओ सोए लावे ने ताको आत नावे के मन हर के नाम की भी सुखदाई कर कृपा नानक अबले लाए मिथ्या तन धन टूम सवाए मिथ्या ममता मैं मिथारा जुम तन माल मिथ्या का क्रोध कराल मिथ्या रथ हस्त्या सो वस्त्रा मिथ्या रंग संगमय विगस्ता मिथ्या ध्रुव मोह मान मिथ्या पशु प्रकृत कुमान अस्त्र भगसात की शरण नानक जप जप जीवे रखे जन मिथ्या सुरन पर निंदा सुनाय मिथ्या स्पर धर्म कुहिरा मिथ्या नेत्र पिख्त पर तरुपा दे मिथ्या रसना पूजन स्वाद मिथ्या चरण पर कुकार गुदावे मिथ्या मन बुरलो लुभाव मिथ्या तनि पर पुकार मिथ्या बास लेत विकार बिन पूज्य मिथ्या सब है सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आरजा सास बिने कहो सुचा बिरथा नाम बिना तने अंद मुख आवे तक ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रन बिरथा व्याग में बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन कृणार्थ दाम धन धन ते जन जे कड़ वस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ रह त्यावर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख गुण लावत जन हर पुरबुर बीन बाहर बेग न कहु बीन और उपदेश आव न करे आव जाव जन्म मेरा जिसके अंतर संकार तिसके सिख तरह संसार जो तुम बाणे दिन पर जाता नान कुंजन चरण बराता करो बेनती बाल पुम सब जाने अपना की आपे माने आपे आप आप करतन वीरा किसे दूर जनाव किसे बजावत नेरा उपाव सैन सग तेरा सब की जाने आत्म की रह जिस भाव है तुझे लड़गा तान तरंतर समाय सो सब जिस कृपा करी निमख निमख

जय प्रसाद क्षतीय मृदगा ठाकर को रखुणुमा जय प्रसाद सुगंधर लावे तिस्को समृत परम गत पावे जय प्रसाद सुखमंदर तिहते सदा मने अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुगोसन आठ पैर समृत सुना जय प्रसाद रंग नानक सदा तेवन जोग जय प्रसाद पाठ पटम हंडावे तिसे त्याग दबड़ पावे जय प्रसाद सुखसे सोय जय मन आठ पैर ताका जस का विजय जय प्रसाद तू सब कुमाने मुक्ता को सर सरकाने जय प्रसाद तेरे रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब उदर की मन पावे नानक पासे ती कर जा जय प्रसाद रो कंजन दे ही लिव लाओ तिस राम सुने जय प्रसाद तेरा उल्ला रह मन सुख पावे हर हर जस कह जय प्रसाद तेरे सगल सिद्ध डाके मन शर नहीं पा ठाकुर प्रभुता जय प्रसाद तू गुण पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभु चे जय प्रसाद पाई दृढ़ दे नानक तक की भगत करे जय प्रसाद भुखण बैरी जय मन ते सिमर काल सकी जय जय प्रसाद अस्वस्थ सुवारी मन तिस प्रभु को करुण विसारी जय प्रसाद बाग मुक्त नरा क्रोध अपने मना जिन तेरी मन बण बनाए उठत बट सत से ध्याय तिसे ध्याय जो एक लख हम अणंग रखे जय प्रसाद करे पुण बोधान मन आठ पैर कर दुसगा ध्यान जय प्रसाद विजान बिहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जय प्रसाद तर सुंदर रूप सो प्रसम सदा रूप जय प्रसाद ने की जा सो प्रसम सदा जनरात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जिस कहे जय प्रसाद सुने करुणा जय प्रसाद भी कह समाज जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद जय वसना जय प्रसाद हस्कर चला जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद प्रमुगत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्राप्त त्या गुरु कदला को गुरु प्रसाद नानक मंजा को जय प्रसाद पुर संसार तिस प्रभु को मूल अमृत विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप प्रेम मूर्तता को जाप जय प्रसाद रे कार्य पूरे तिस जन मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मृत्युता सुरात जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाव आप गुआ सो हर कुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विकास प्रभु सुबर सन बसे मन सोए प्रभु दया ते मधु तुम सर्व धन प्रभु तेरी माया

सासमल सगळी हो साधकमुळे मान साधकमुळे सुग्यान साधक संग बुझे प्रणीरा सत्संग सभोतन वीरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कुपुर जतन साधक महिमा वर्णे कुण प्राणी नानक साधक सुभा ब्रह्म समान साधक संग वचन मिले साधक संग कथा प्रफुल्ले साधक संग अमस पंचा सत्संग मृत रस पंचा सत्संग सब कि सत्संग नमो होर बैन साधक संग न कथों तावै सत्संग सुमन पावै साधक संग ते भिन्न सत्संग नानक प्रभ सुप्रसान सा

ਸਾਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਿਆਵੇ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਹਿਵਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਪਿਕਤ ਮਨਕੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸੁਰ ਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਵ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਤ ਜਤ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੌਖੀ ਸੁਰ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬਿਰਕਲ ਬਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪੌਣਪਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਤੇ ਸੁਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੇ ਸੁਰਨ ਖੱਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਸਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਨਾਗ ਜਿਸ ਪਾਵਤ ਇਸ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਤ ਕਈ ਕਈ ਕੋਟ ਪੇਦ ਪ੍ਰਾਸਿਮਰਤਾ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਤਰਜੀਵ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੈਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਜਗਨ ਪਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਪੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਖ ਵਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕਾ ਪੁਲ ਪੁਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਪਰਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤੀ ਖਾ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਪਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰੱਖੈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਆਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜੰਤੇ ਆਤਮ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੈ ਕਈ ਕੋਟ ਦਸਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਗੇ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਅੰਗ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀਆਂ ਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਕੁੰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੂ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨ ਵਿਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਏ ਸਮਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕੇ ਦਾਸ ਦਿਨ ਹੋਵਤਾਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੈ ਬੇਤੀ ਸਦਾ ਨਾਰੇ ਕੁਨਿਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰ ਪੈ ਸਦੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤੁਮ ਰੁਖ ਸਾ ਸਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾ ਸਾ ਸਮਾਰੈ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੂਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤੁਸ ਬਲਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਤਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਜੁਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋ ਕਿਨ ਮਤਾਪ ਤਾਪ ਨਾਰਾ ਤਨ ਕਿਸ਼ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਤਾਰ ਦੁਰਹਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਨਿਕਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਂਗ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਮਾਨਕਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤ ਤਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤ ਤਿਹੁਦਾਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਵ ਸਵਾਮੀ ਖੇਲੇ ਬਖਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਣ ਆਵੇ ਕਹੁ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਆਵੇ ਜੁਤਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਸਿਆ ਧੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ ਜੁਤਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੈ ਅਨਜਾਨ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ ਜਾ ਜੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੱਚੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਲਾ ਦਿਆ ਦਿਸਤਾਵੇ ਨਿਪਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਂਗ ਤੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਖੀਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਸੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸਪਟਾਵੇ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸੀਸ ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਈ ਸਾਧ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਸਰ ਕੁਨਾਥ ਅਗਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀ ਹੋ ਜੋ ਤਸਾਵੇ ਸੋਈ ਬਣਤੀ ਹੋ ਕਬੂ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬੂ ਸੋ ਖਰਕ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਹਾਰ ਕਬੂ ਉਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਮਨ ਚਾਹ ਨਾਨਕਾ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਈ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਿਟ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਅਬ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵ ਕਬੂ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਾ ਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤੇ ਵੀਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੰਗ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪਣਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੂੰਹ ਤਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਕਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀ ਤਸਤੰਗੋ ਜੀਆਨ ਕਜੂਨ ਭਰਮੇ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤੇ ਵਿਨ ਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਂਗ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸ ਕਬੂ ਸਾ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੇ ਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਵਿੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਾਨ ਕਾਨੀ ਬਿਨਾਸ ਮੰਤ ਨਾਵਰਤੇ ਗਰੰਗ ਸਦਾ ਵਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾ ਕਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਕੇ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਬਾਣ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜਮਾਨ ਸੁਨਰਕ ਪਾਤੀ ਉਸਮਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜਬਨ ਮੰਤ ਸੋਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਨਤਾ ਆਪਸ ਕੁਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੇ ਜਨਮ ਰੇ ਮਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ ਤਨ ਪੁੰਗ ਜੋ ਕਰੇ ਗਵਾ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ
कर कृपा जिसके हृदय गरीब विसावे नानकी हम मुक्ता के सुख पावे तमंता हुई कर कृपावे त्रे समान कसंग न जावे मौल अशकर मान को परगले आस पाल पितरता कहे विनाश सब त्या जाने बलवंत किन होया जाए पसवंत हुई जाए पसवंत किसी ने वध्या अहंकारी धर्म राय तिस करी गवारी गुरप्रसाद जा का मिटे वास हो जा नानक तक के प्रवान कूट कर्म करे हंतारी सन पावे सगरे बतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर फिर अवतार अर्क जतन कहा तुम द्रव्य आदर के ऐसे कवि आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट ना आवे सर्व किरियन जा का मन होए कौन नानक ता के निर्मल सोए जब लग जाने बुझते कछ होए तब उसको सुख नाही कोई जावे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निकल नाही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्मराय देश जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटै गुरप्रसाद नानक छूटै सहस खटै लक उड़तावे तितनावे माया पाशे पावन भूख बिक्या कह करै ने सुतावे खप कमरे बिन संतोख नाही को राजो सुपन वृत सुपन मनोरथ वृत सब काजे राम रंग सर्व सुख होए विपागी किसे प्राप्त होए कारण रावण आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण रावण करने हार उसकी हाथ का विचार जैसी दिस्कत ऐसा हो आपे आप आप रस होए जो किन जो किशकिन सो अपने रंग सबते दू सब के संग बुझ देख करे विवेक आपे आपे अनेक वरना बिन से आविना जाए नांग सदी रह समाए आप ते समझे आप अप्रचय सबके साथ अप किन अपन विस्तार सबके उसका करने हार उसके पिन का किस होए तांतरंतर एक सोए आप में तिलताव करने हार कौतक करे रंग पार मन में आवन अपने माए नानकी कहना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरप्रसाद किन्ने विख्याने सच सच सच सबके ना कूट मरदे किन्ने बिरना ची ना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार नू निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी करकर सुनी सर्वन बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपी नानक मन प्रीत सलोका संसरण जो जन प्राय सोजन उदनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत के दुख नारज घटै संत के दुख जमते नहीं छुटै संत के दुख सुख सब जाए संत के दुख नकम पाए संत के दुख मत होए मलीन संत के दुख सो बाते ही न संत के तक रखना कोए संत के दुख थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जय करे नानक संसनित कबीतर है संत के दुख ते मुख भवै संतन के दुख काग जो लवै संतन के दुख सर्प जोन पाए संत के दुख त्रिक जोन करमाए संतन कह दुख तृष्णामा जलै संत के दुख सब कुछ लै संत के दुख ती सब जाए संत के दुख नीच चाहे संतो की कथा उकू नाहे नानक संत भावे तो विगत पाए संत का निंदक महाताई संत का निंदक निटक न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक तुखी हर दीना संत का निंदक सराब रोग संत का निंदक सराब जोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पाविता उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसी का नहीं मिता संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी सब त्याग गए संत का दुखी मैं कारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख तै टरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावत लय मलाए संत का दुखी दे बीते टूटै संत का दुखी काज ना पहुंचै संत के दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थू था जो सास बना मृत की लो था अंत के दुखी के जड़ स्नाहे अपन विजा पे खाए संत के दुखी का वना रख नहार नानक संत पावत लय वार संत का दुखी इं बिरलाए ज्यो जन्म हून मछड़ी तरफड़ाए संत का दुखी भूखा निराज जाए जो पाव किंद नितरा पै संत का दुखी छटे केला जो वार तिलकी तमाए दुहेला संत का दुखी धर्म तिराज संत का दुख सत मिथ्या कहत कीर्तन का तुरी भया नानक जिस पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप जाए संत का दुखी किधर के मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाही है संत का दुखी ना मर ना जीवाई है संत के दुखी की पूजे ना सा संत का दुखी उतने निराशा संत का ना दुख ना तृष्टा कोई जैसा पावे तैसा कोई होए प्या कितना मिटे कोई नानक जने सच्चा सोए साब कर तिसको करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की करो दिन रात उसके आओ सास क्रास सब का स्वच्छ तिसका किया अपना के जैसा करे तैसा कुथिया अपना की लभ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तुस अपन नाम दे बड़पागी नानक जन से सलोका तजो सियान सुरजनो सिमरो हरा राय एक आसर मन रखो नानक दुख परम पजाय अष्टपति देख मान की टेक विथि सब जान देव को एक भगवान जिसके दिए रह अकाए बौना तसना लागे आए मारे राके को आप मानक कै किश नाही हाथ तिसका हुकम भू सखोए तिसका नावर कंठ परोए सिमर सिमर सिमर तप सोए नानक मगन लागे कोए उस तत मन में कंद्रंकार कर मन मेरे सत बुरहार
निर्मल रसनामृत पियो सदा सहिला कर लै जियो नैनो पिक ठाकर का रंग सासा बिंस सब संग चारण चलो मार्ग बिंद मिटे पाप जपे हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगे नानक उज्जल मथावट पागीति जनक माय सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करे विचार सिखन मंत्र संसार मंत्र बोलो हर मुखी सदा सदा जन उत्ते सुखी एको एक एक पछाने उत उत के सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना सूझै तिसकी जानो तिसना पूजै सा संग हर हर जिसका है तू सर्व रोग तू हर जन रात अंतन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जन किया साध की कटी जम की फासा पार ब्रह्म जिस मन भूख नानक तसन लागे धूप जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संसार नहीं डलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किस्त जरा जैसा सात ऐसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिज्या गुरु प्रसाद तब सब बुझा जब देखू तब सब किस मूल है नानक सो सुख सोई स्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलता भी कर आपन चलता भी करे आवन जाव दृष्टा दृष्टा गय कारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल में आप चुत्र ताप बनासी नाहि किस खंड धारण तार ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप चपाईता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सकल संसार तनमंत प्रभ के सेव सकल उदाहरण प्रभ के सेव दूप सारण आपे मेले गुरपाल गुरु का शब्द पह निहाल की सेवा सोई लागे जिसन कृपा कृपे पागे करे बड़ भागे नाम जित पाए बिसराव नानक तिन पुरख को तुम करमा जो कुछ करी उस प्रभ के रंग सदा सदा बसियर संग सहज सुभाए हो बिस होए करने अर्प साए सोई कर प्रभ का किया जन मीटर गाना जैसा सा तैसा दृष्टांडा जिस दुप समाए समाए उये सुख दान उनु बनया या उसका दिनों महान नानक प्रभु जाने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गण हाक पा सर्वनिया पे प्रतिपा सगुण चिंता सुनवाए तिस ते बिरथा कोई नाही रे मन मेरे सदार जा अपना सी प्रभ आपे आपन किया कष्ट ना होए जिस प्राणी लुचे कोई तो सुन लाए तेरे कष्ट काम नानक तपे करना रूपवंत होई नाही मोई प्रभु की जो संकट सोई त्रवंता हो क्या आगू कर बे जा सब तुसका दिया दरपैत सूरज को कहावे प्रभु की कला बना के तावे जे को हे बहे दातार तिस दिन दिन हर जाने गवार जिस सा टूटे रोग नानक सो जन सदार योग जो मंदिर को थामे थमण तो गुरु का शुद्ध मुनि स्थमण जो पखा नव चढ़तरे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दी प्रगास गुरु दसन देख मन हुई विगास जो महा ध्यान में मार्ग पावे तो साधु संग बिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक ग्यार लुचा पूर मन मुख काहे बिलाई है पूर्व का लिखिया पाए है दुख सुख प्रभु देव नहार अब त्याग तू तुसे तार जो कुछ करे सोई सोई सोई सुखमान भूला काहे फिरे है जान कौन बसता इतरे संग लपट रू रस लोभी पतंगा राम नाम जो फिरदा माए नानक प्रसिद्ध कर जाहे जिस वक्र को लें तू आया राम नाम सत्र कर पाया तज मान लिहु मन मूल राम नाम हृदय पैं तूल लात के संत संग चाल वृत्या बिखिन जंजाल धन तन कहे सब कोई मुख उजल हर दरगाह सोई व्यापार बरला व्यापारे नानक तां के सत बलहार चरण साधक धोई तू पियो प्रसाद को अपना जियो साधक तू कृष्णा साध प्रजाई कृपा सास भागी पाई है सास हर कीर्तन गाई है अनक बिगड़ ते साधु राखे हर गुण गाए मतरस चाखे उठ गए संत दरिया सर सुख नांग ते पाए मृतक को जी वालन हार भूखे को देवत आधार सर्वदान जगदीश टीम आए पूर्व लिखे का लेना पाए सब कुछ तिसको करने जो होग तिस पर दूसरा हुआ ना होगा जाप जन सदा सदा दिन रहती सब ते उच निर्मले करनी जाप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मले करनी कार कृपा जिसको नाम दिया नाक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनी तैलोए जाके हृदय कोई सच करनी सच ता की रह तू सच हृदय सतमुख कह तू सच दि सच आकार सच वर्ती सच अपसार पार ब्रह्म सच कर जाता नाक सो जन सत समाता सलोक रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिगुणति प्रपिन्ना तिसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदे अविनाशी ब्रह्मन में राख मान कीति पी त्याग तिसते परे नाही किछ कोई समत निरंतर एको सोई सर्व निरंतर एको सोई आपे बिना आपे दाना गहर कबीर गही सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल पसंद बख्शंद सात्री की चरणी पाओ नानक के मन इंद्राओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाए सोई होग हरण परन जंक नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
आनंद रूप मंगल शब्द जाके सर्वतोक सुने करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपिसा गिरसत में भोगी त्याहे त्याहे पक्ते सुख पाया नाग तिस पुरखा कने अंत न पाए जाकी लीला की मित नाहि है सकल देव हारे बगाए पिता का जन्म के जाने पूत सकल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावे से ते गुण में जाकु परमाए जन्म रिफरावे जाए ऊच नीच तिसके सुधारण जैसा जनाम तैसा नानक जा नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक करेक नाना विद किन विस्तार प्रभु नसी कंकार नाना तृत करे कनमाए पूरे पूर सब ठाए नाना फिर कर बंत बनाई अपनी किंतु आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाव जाप जाप जीव नान करना नवक तारे सगले जंत नवक तारे खन ब्रह्मांड नवक तारे सिमित विद पराण नवक तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे गास पताल सब नवक तारे सगले आकार नाक तारे पुरी सब पवन नाम के संग उतरे सुन सरवण कर कृपा जस अपने नाम लाए नाक चौथे पद्म सुजनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केल प्रधान करतूत सत सजा की बाणी सत पुरख समाय समानी सत कर्म जाकी रचना सत सत मूल मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मल जिसे बुझाई तिसे सब भले सत नाम ब्रह्म का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाए सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा किरे ते प्रवेश सत निरत भुजे जे कोई नाम जब ता की गत होए आप सत किए सब सत आपे जाने अपनी मित गत जस की श्री सो करने हार अपना बुझ करत विचार कते कितन करते कीमत ना जानी किया नानक जो सुभावे सुवर्तिया विषमन विषम पाए विषमाद ना जिन पूजिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के बचन पदार्थ लय उई दाते तू काटन हार जाके संतरे संसार जन का सेव सुवड़ भागी जन के संग एक लिवलागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोका आद सच जुगाद सच

निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कैत रहत गत पावो सार भूत सतर को नाउ सह सुभाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरी तरस मैल बिंस जाय मैं बिख फैल होए चिंत बसै सुख नाल सास गिरा सर नाम संभाल। शाड सियानप सगली मना सा संग पावे सच तन हर पूंजी संच करो व्यवहारी हां सुख दर गय जाय कार सर निरंतर एको देख कौ नानक जा कै मस्तक लेख एको जप एको सा लाहा एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक राव पूर्ण पूरे प्रभ्यापन के विस्तार एक ते भय एक राध प्राशत गए मंत अनंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोका। फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो और नामो साजना की मांगो तूर पार मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्यामो चन कम सो लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट मांस कोय आर रस पावे बरला कोई जिंचा कैसे जंत्र ताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने सो पर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सर नाम सब त्याग अंतर प्रगा संदन लिवलाग। बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुखोए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होय दयाल शिव की नु सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भरम गया। ਇਸ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸਕਾ ਸਾਥਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ ਜਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਗਿਨ ਧਿਆਇਆ। साजन संत करोए काम मान त्याग जपो और नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो। आप जपो अवरा नाम जपावो भक्त पाए तरिए संसार बिन भक्ति तन होशीशार सुख कल्याण सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम। सकल दुख का उतनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत नंतरे सुभाव नेत्रोपेक दर्शक होए मन बिकसे साध चरण धोए भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग। एक बसद जेकर मैया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भक्त वशल सदा।

पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्मित कर पेखो सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंदो आसन त्यागो तरंग समझना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सासंग अग्न सागर तर वर्तन के परले भंडार नन गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद मित्रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार तुम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावतो उधार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाद वाजा सुन सुनंद करे प्रभ गाजा प्रगटे गोपाल मात के माथे नानक कुदरतन कै साथे।

0: वैदिक वढाई
1: इसका बल ना इस हाथ
0: कर्ण करावन सर्व गुनाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: ज्योतिष भावे सोई फुंतियो
1: कभू उच नीच में बसै
0: कभू सोग हरक रंग हसै
1: कभू ऋण चिन्ह व्यवहार
0: कभू ऊप काश प्याल
1: कभू बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: कभू नृत्य करे वो पांत
0: कभू सोए रह दिन रात
1: कभू महाक्रोध विकराल
0: कभू सर्व की होत्र बाल
1: कभू होए भय बर राजा
0: कभू पेखारी नीच का साजा
1: कभू आप कीर्त में आवे
0: कभू भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभ राखै तुम ही रहै
0: गुर प्रसाद नानक सच कहै
1: कभू होए पंडित करे बख्यान
0: कभू मौन धारी लावे ध्यान
1: कभू तट तीर्थ स्नान
0: कभू से साधक कुज्ञान
1: कभू कीट हर्ष बतांग होए जिया
0: अनेक जोन पर मैं परमिया
1: नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे
0: ज्यों प्रभ भावे तमै नचावे
1: जो तिस पावे सोई होए
0: नानक दूजा वर न कोए
1: कभू सास संगते पावे
0: उस स्थान ते बहर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते करंग
0: सदा बसे पाप भ्रम के संग
1: ज्यों जल में जला एक टन
0: ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गौन पाए विश्राम
0: नानक प्रभु के
1: सत

0: संत के दुखन आज्ञा कटाए,
1: संत के दुखन दम से नहीं छुटा,
0: संत के दुखन सुख सजाए,
1: संत के दुखन नरक मह पाए,
0: संत के दुखन में तो इमली न,
1: संत के दुखन सो पाते ही न,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन तान प्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जी कराए,
1: नानक संत संग निंदक भी तराए,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जोन लबे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिक्त जोन कर्माए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जलाए,
1: संत के दुखन सबको चलाए,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच जाए,
0: संत दुखी का ठाउं को नाहे,
1: नानक संत पावे ता ओपी गत काहे,
0: संत का निंदक मात उताई,
1: संत का निंदक किंटक न पाई,
0: संत का निंदक मात त्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राहते ही,
1: संत का निंदक दुखी अर्दीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा विजोग,
0: संत की निंदा दोख में दो,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मुख,
0: संत का दुखी सदा पवित्र,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लग गया,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी मांकारी,
1: संत का दुखी सदा भिकारी,
0: संत का दुखी जन में मरे,
1: संत की दुख ना सुखते टरा,
0: संत के दुखी को ना ही ठाउ,
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अर्दी ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइया,
1: संत का दुखी उजड़ पाइया,
0: संत का दुखी अंतर से थोथा,
1: सास बिना में तकी लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किसना है,
1: अपन बीजा पे ही खाए,
0: संत के दुखी को वर्ण रखन हार,
1: नानक संत पावे ता लय उबार,
0: संत का दुखी ओं बिल्लाए,
1: यो जल बहुन मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: यो पावक इंद्र नहीं त्रापा,
0: संत का दुखी छुटे केला,
1: यो बुआड़ तिल खेत माए तो हेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद में त्या कहत,
0: तीर्थ निंदक का तुरी पिया,
1: नानक जो बिस पावे सोई त्या,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सरा सहकाइया,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइया,
0: संत के दुखी की पूजे न आसा,
1: संत का दुखी उड़ चले निराशा,
0: संत के दोख न त्रिष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कितना मिटे कोए,
1: नानक जाना सच्चा सोए,
0: सब कर तिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: अब की उस्तर करो दिन रात,
1: जैसा दिया वो सास क्रास,
0: सब कुछ वर्ते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को तिया,
0: अपना खेल आप करने हार,
1: दूसर कौन कहे विचार,
0: विष्णु कृपा करे तिस अपन नाम दे,
1: बड़भागी नानक,
0: नानक जन से श्लोक, तजो स्यान बसुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, सुबरी मानु की टेक वृत्ति सब जान,
1: देवन कोई का भगवान,
0: निष्कर दिए रहे अगाए,
1: बहुत न तृष्णा लग आए,
0: मारा रखा एक को आप,
1: मानो के कुछ ना ही हाथ,
0: किसका हुकम वो सुख होए,
1: किसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्राप्त होए,
1: नानक बिगन न लग गया कोई,
0: उस्तद मन में कर निरंकार,
1: हर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सोहेला कर ले जियो,
0: नैनो पेग ठाकुर का रंग,
1: सा संग बन सह सब संग,
0: चरण चलो मार गोविंद,
1: मेरा पाप जपिए हर बिंद,
0: हर करम शरण कथा,
1: हर दरगाह नानक पूजल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माहे,
1: सदा सदा हर कै गुण गाहे,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: चेतन मन गणी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो ते सुखी,
0: एक को एक एक पुछन,
1: एक दुखी उसो जी जाना,
0: नाम संग जिसका मन मान्या,
1: नानक तने निरंजन जान्या,
0: गुरु प्रसाद अपन आप सुझा,
1: जिसकी जानो कृष्णा बुझा,
0: सास संग हर हर जस कह,
1: सब रोकते हो हर जन कहत,
0: अन दिन कीर्तन केवल बख्यान,
1: ग्रस्त में सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर से सन की आशा,
1: इसकी कटिया जम की फासा,
0: पार ब्रह्म के जिसमान सुख,
1: नानक से न लग गया दुख,
0: जिसको हर पर मानचित आवे,
1: सो संत सेला नहीं डुलावे,
0: जिस पर अपना कृपा करे,
1: तो सेवक को किस ते डरा,
0: जैसा साथ ऐसा रिश्ताया,
1: अपने कारज में आप समाया,
0: सोदर सोदर सोदर सिज्ञा,
1: गुरु प्रसाद तस बुझया,
0: जब देखो तो सब किस मूल,
1: नानक सो सुकम सोई स्थूल,
0: किस जन्म न किस मरह,
1: आप चलता आप ही करा,
0: आवन जावन दृष्टान दृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनेक युक्त रच ताप खाप,
0: अब नाशी नाही किस खंड,
1: धारण धार रहे ब्रह्मांड,
0: लख पे पुरख प्रताप,
1: आप जपाए तन नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सब बावन,
1: सगल संसार तरह तिन मंत,
0: सब के सेवक सगल उदारण,
1: सब के सेवक दुख विसारण,
0: आपे मेल है कृपाल,
1: गुर का शब्द पे निहाल।

0: होए क्या को दरबार
1: दासों के किसका दिया दरबार
0: असुराज को कहा
1: रखी कला बिना कहता वह
0: देखो होए बहरता
1: इस दिन हर जाने का बार
0: इस गुरु पर साथ उठे हम रोग
1: नानक सो जन सदा रोग
0: जो मंदिर को थमे थमन
1: गुरु का शब्द मने स्तंभन
0: जो पाखान ना करतर
1: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर
0: जो अंधकार दीपक प्रकाश
1: गुरु दर्शन देख मन होए विकास
0: जो महा ध्यान में मार्ग पावे
1: तो साधु संग में ज्योत प्रगटावे
0: संतन की बांछो तूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिलाई है
1: गुरु लिखे का लिखा पाई है
0: दुख सुख प्रभ देवन हार
1: अवर त्याग तू सच तार
0: जो कछ करे सोई सुख मान
1: उला काहे फिरे जान
0: कौन बस आई तेरा संग
1: डटरे और असलोपी पतंग
0: राम नाम जब हृदय माहे
1: नानक पद से सेती घर जाहे
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: ताज मान लियो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाल खेव संत संचाल
1: अवर त्याग बिख्या जंजाल
0: धन धन कहे सब को
1: कुजल हर दरगाह सोए
0: एह वा पार विरला वा पार
1: नानक ताका सद बलहार
0: करन साल के तोए तोए पियो
1: अरब साथ को अपना जियो
0: साल की तूर करो इशनान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवड़ भागी पाइए
1: साध संग हर कीर्तन गाइए
0: अनेक विघन ते साधु राख
1: हर गुण गाय अमृत रस चख
0: ओट दही संतन दरियाया
1: सर्व सुख नानक तै पाया
0: मृत को जीवालन हार
1: भूखे को देवता दार
0: सर्व निदान जग की दृष्टि माहे
1: गुरु लिखे का लहना पाहे
0: सब के तिस्काओ करने जोग
1: जिस दिन दूसर हो आना हो
0: जाप जन सदा सदा दिन रहनी
1: सबसे उच्च निर्मल एक करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुरु की प्रतीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: भगत भगत सुनिए ते लोए
1: जाके हृदय को सोए
0: सच करनी सचा की रहत
1: सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दिस सचा कार
1: सच वर्ते सचा पसार
0: कार ब्रह्म जिन सच कर जाता
1: नानक सो जन सच

0: मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: पाव सब मीत बिसारो,
1: चरण कमल रज में अवतारो,
0: करण कारण सो प्रभ समर्थ,
1: दृढ़ कर कहो नाम हर वत,
0: धन संचो होवो भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आस रखो मन माहे,
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे,
0: जिस धन को चार कुंटे उठतावे,
1: सो धन हर सेवा ते पावे,
0: जिसो को नित बाशे मीत,
1: सो सुख साधु संग प्रीत,
0: जिसो बाको करह भली करनी,
1: सासोबा पद हर की सरनी,
0: अनको पावी रोग न जाए,
1: रोग मिटाय हर अब खज लाए,
0: सर्व निदान में हर नाम निदान,
1: जब नानक तक है परवान,
0: मन प्रबोध प्रबोधो हर कह नाए,
1: जय दिस धावत आ बैठाए,
0: ताको बिगन न लागे कोए,
1: जाके हृदय बसे हर सोए,
0: काल ताती ठंडा हर नाओ,
1: सिमर सिमर सदा सुख पाऊ,
0: भव बिन सह पूर्ण होए आस,
1: भक्त पाए आत्म प्रकाश,
0: चित कर जाए बसे अविनाशी,
1: कहो नानक काटी जम फांसी,
0: तात विचार कहे जन साचा,
1: जन्म रेसो काचो काचा,
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
1: आप त्याग शरण गुरुदेव,
0: ये रतन जन्म का होए उदार,
1: हर हर सिमर प्राण आधार,
0: अनको पावना छूटन हारे,
1: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
0: हर की भक्त करो मन लाए,
1: मन बंचत नानक फल पाए,
0: संगना चालस तेरे तना,
1: तू क्या लपटाव है मूर्ख मना,
0: सत मीत कुटंब हर बनता,
1: इनते कहो तुम कवन सनाता,
0: राज रंग माया विस्तार,
1: इनते कहो कवन छुटकार,
0: अस हस्ती रथ सवारी,
1: झूठा डंप झूठ पासारी,
0: जिन दिए तिस बुझे नाम बिगाना,
1: नाम बिसार नानक पछताना,
0: गुर की मत तू लेहे आने,
1: भक्त बिना बहु डूबे स्याने,
0: हर की भक्त करो मन मीत,
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
0: चरण कमल राखो मन माहे,
1: जन्म जन्म के किर बिख जाहे,
0: आप जपो अबरा नाम जपावो,
1: सुनत कहत रहत गत पावो,
0: सार भूत सत हर को नाओ,
1: सह सुभाए नानक गुण गाओ,
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल,
1: बिनस जाए होम बिख फैल,
0: अचिंत बसे सुख नाल,
1: सास करास हर नाम समाल,
0: शाड स्याणप सगली मना,
1: सा संग पावे सच तना,
0: हर पूंजी संच करो व्योहार,
1: इहां सुख दरगह जयकार,
0: सर्व निरंतर एको देख,
1: कह नानक जाके मस्तक लेख,
0: एको जप एको साला है,
1: एक सिमर एको मन आहे,
0: एकस के गुण गाओ अनंत,
1: मंतन जाप एक भगवंत,
0: एको एक एक हर आप,
1: पूरन पूर रहे प्रव्याप,
0: अंत विस्तार एक ते पए,
1: एक रात प्राचत गए,
0: मंतन अंतर एक प्रव्रत,
1: गुर प्रसाद

0: कर कृपा देवो प्रणाम।
1: साध जना की मांगो तूर,
0: पा ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर,
1: सदा सदा प्रभु के गुण गावो,
0: सास सास प्रभु तुम ध्यावो,
1: चरण कमल स्यो लागे प्रीत,
0: भक्त करो प्रभु की नित नीत,
1: एक ओट एको आधार,
0: नानक मंगे नाम प्रभु सार,
1: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए,
0: हरस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जन त्रिपताने,
0: पूरन पुरख नहीं डोलाने,
1: परे प्रेम रस रंग,
0: उपजय चाओ साध कर संग,
1: शरण आन सब त्याग,
0: अंत

0: मुख भगवान
1: सर्वै कंठ मुक्त मोख पाए
0: एक नमक हर के गुण गाए
1: मन का राज भोग वडियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: मो भोजन का पर संगीत
0: रसना जपती हर हर नीत
1: भली सो करनी शोभा तनवंत
0: हृदय बस पूर्ण गुरमंत
1: साध संग प्रभु निवास
0: सर्व सुख नानक प्रकाश
1: श्लोक सर्व गुण निर

0: जब अकारे हो कशना दृष्टेता
1: आपन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब भय क्रोध के संकमात
0: जब इसका भरण चेह न जापत
1: तब हर शोक को किस व्यापत
0: जब आपने आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: आपन खेल आप वर्तीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंध मुक्त को किस को गणी
0: जब एक हर अगम पार
1: तब नरक सुर को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
1: तब शिव शक्त को कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तरे
1: तब कवन निडर कवन कत डरा।

0: के सोए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे
1: अपने आप ही चर्जा
0: नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जय निर्मल पुरख पुरख

0: अपार
1: नानक दास सदा बलहार
0: पूरा है दयाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रे उप्याप
0: प्रतपालै जीवन बहु पात
1: जो जो रचियो सुत सहत्यात
0: जिस भावे तिसलै मिलाए
1: भक्त करै हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: कर्ण हार नानक एक जान्या
0: जन लागा हर एक नाए
1: जिसकी आस न बिरती जाए
0: सेवक को सेवा बने आई
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: इसते ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसया निरंकार
0: तोर भय निर्वैर
1: अंधन पूजा गुर के पैर
0: लोक सुखी है पर लोक सोहेले
1: नानक हर प्रभु आपे मिले
0: साध संग मिल करो आनंद
1: गुण गावो प्रभु परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार
1: दुर्लभ देखा करो उद्धार
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरण का अह सुहाओ
0: आठ पहर प्रभु पेखो नेरा
1: मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा
0: सुने उपदेश हृदय बसा

0: दर्द मन तय पो जाए।
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: दरगह निभे के तुम्हारी,
1: एका टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहर न आवे जाए,
1: दूर कहा को जाए,
0: उबरे राखण हार त्याए,
1: निरपो जपे सगल पो मिटे,
0: प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे।

0: जाकी दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: मन बसै सोत निहाल।

0: नमस्कार
1: सा संग पज परमानंद
0: उधारो जियो
1: गुण गो बिन अमृत रस पियो
0: चित वो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग नेक
0: दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का है आधार
0: सलोक साध के बचन
1: अमलीक लाल हे रतन
0: संत कमावत हो तो

0: ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया
1: गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया
0: राखण हारे राख्या अपनी करमया
1: महापगल प्रभ काढ़िया कीना अपने
0: सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया
1: बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया प्रभु जय सुख शांत
0: वड प्रताप चर्ज रूप हर कीनी दात
1: गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई
0: हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ
1: मिठी करे न होवी जन की अरदास
0: नानक जोर गोविंद का पूरन गुण तास
1: लावल महला पंजवा ताती वाहन लगी पार ब्रह्म शरणाई
0: चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई
1: सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई
0: राम नाम औखद दिया एकाल विलाई रहाओ
1: राख लिए तिन रखन हार सब ब्यार मिटाई
0: को नानक कृपा पई प्रभ पये सहाय
1: बिलावल महला पंजवा अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव
0: सुख शांत सहज आनंद पये पूरन पई सेव रहाओ
1: भगत ना की बेनती सुनी प्रभाप
0: रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप
1: दुख मारे बख्शियन अपनी कल तारी
0: मन बांचत फल दित्यन नानक बलिहारी
1: बिलावल महला पंजवा ताप रहया गुर सृजन हार सतगुरु अपने को बल जाई जिन पैर रखी सारे संसार आओ
0: कर मस्तक धार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम।

0: दुख बिन से सुख अंत प्रवेशा त्रिशन बुझी मन तन सच त्राप
1: नाश को नाश शरण समृद्धा सगल श्रेष्ठ को माई बाप
0: भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप
1: बिलावल महला पंजवा अरिष्नान सिमर प्रभु अपना मन तन भय रोगा
0: कोट बिगन लाते प्रभु शरणा प्रगटे भले संजोगा
1: बाणी शब्द सुभाख्या गावो सुना करो नित पाई गुरपुरे तुम रख्या रहो
0: साचा साहेब अमित बडाई भगत वचल दयाला
1: संता की पैर रखदाया
0: हरे अमृत नाम भोजन नित पहुंचो सर्ब वेला मुख पावो
1: जरा मरा ताप सर नाठा गुण गोविंद नित गावो
0: सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बने आई
1: रक्त भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वड्याई
0: सोरठ महला पंजमा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभु के चरण
1: राखन हर रखो बारन सतगुर ताप उतारिया
0: उबरे सतगुर की शरणाई।

0: धारी
1: आठ पैर पर आराधो स्वामी पूरण काल हमारी
0: हर जियो तू सुख संपत आसरा
1: राख ले ओ पाई मेरे को प्रभु अगैर दास रहाओ
0: जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा
1: कहो नानक गुर पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा
0: सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया
1: पाप गए रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया
0: मेरा गुर पूरा सुखदाता करन कारण समरस स्वामी पूरन पुरुष विधाता रहाओ
1: आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुर नानक भय दयाला
0: जय जय काल भय जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला
1: सोरठ महला पंजमा दुर्त गवाया।

0: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई
1: कर देखे कीता अपना ज्यों तिरदी वड्याई।

0: ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: सब चरणन में रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
0: हमरे दुष्ट सबै तुम कहो आप हाथ दे मोहे बचावो
1: दुखी बसे मोरो परिवार सबै करता
0: मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रन को आज संघरे है तो मैं शाड कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे है राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो नमस्कार ते सही को अमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी काट काट

ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। जब करख करा करतारा प्रजा धरत तब देहे अपारा। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप।